और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. Dance and party time!

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और क्या है।

0: ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जा
1: यहाँ से पेश है सोनू निगम जी की आवाज में।

सोनू निगम जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों सुंदर सा गीत। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के के करते हैं, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, सिक्के यानी कि मंद खेल्ट, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं सुना हमने और ना ही देखा।

श्रिया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में हमने यहाँ से सुने सुंदर सा गीत। सुने वालों, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे में सुनने वालों, एक उम्र के बाद सिर्फ सात महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जहाँ पर रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जहाँ पर विचार महत्वपूर्ण होता है, फिर आगे में एक उम्र आता है ऐसे कि जहाँ पर सिर्फ साथ रहने के साथ महत्वपूर्ण देता है।

मोहम्मद अजीज अलका यज्ञिक जी और साथ दे रहे थे विनोद राठौड़। ये सब मिलकर हमके सुनाए कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे।

कहते कि अच्छे कर्म अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जैसे सूरज उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। आपको हम यहाँ से साथ लेकर चलते हैं आपके ज़्यादा ना वक्त लेते हुए।

लक्ष्मीकंत और आनंद बख्शी के साथ संगीत पर जो हमने सुने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जी से। अंधेरे में छाया, अंधेरे में साया, यानी कि हचखादियू, अंधेरे में साया और बुढ़ापा में काया हतलेखा, और अंतिम समय में माया हतमतरियल, किसी का साथ नहीं देता। एक बार फिर, अंधेरे में छाया, बुढ़ापा में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता।

उदास ना हो ऐ जिंदगी, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। जी हाँ, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। कभी धूप अंधेरे में भी, कभी धूप अंधेरे में भी, जुगनों की तरह पल भर की रोशनी में जीने की जुनून रखते हैं।

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सुनिए जी। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन बस भूल जाएंगे। इसलिए, जी हाँ, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जी हाँ, याद रखना कि ये ज़िंदगी हमारी है, लोगों की नहीं।

ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। और कहते हैं जिनके मन का भाव सच्चे होते हैं उनके हर काम अच्छे होते हैं।

यहाँ से हम आपके लिए कुछ मिले जुले गीत चुन कर रखी हूँ सुनने वालों, और जरूर से इसे आप सुने और पसंद करें। तो बढ़ चलते हैं सुनने के लिए पहले जोबिन नौटियाल जी की आवाज़ में एक रोमांटिक सॉन्ग।

जिंदगी है तू, ये बात मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा। और ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ कि आप सा ना कोई है और ना आगे में कोई होगा। एक बार फिर जो बेन नौतियाल की आवाज़ में।

रात तक कट गए, सुबह हो गए और यहाँ पर हम भी रात के बाद सुबह आते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात फिर हो जाते हैं।

भी एक सुंदर शब्द है कि जहाँ जिसका दाना रहता है जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इस बार हम सुनेंगे, देखे तो अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में। कि चलने लगी है हवाएं

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज़ में हम यहाँ और मिलकर सुने हैं। कितनी खूबसूरत से गाए हैं कि चलने लगी है हवाएं, वाकई में हवाएं भी चल रहा है और हमारे इंस्ट्रूमेंटल को क्या हुआ, आ गए। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल तो आ गया सुनने वालों। दो लाइन के शब्द हैं यहाँ पर, कितनी उसमें बातें हैं जो हमको छू जाते हैं और वो भी हमको भी ज्ञान की रोशनी भी दे देते हैं। तो ऐसे दो लाइन का ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं यानी कि यूसेल्फ, सिक्स सेल्फ, अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है।

हम यहाँ से सुने हैगा कुमार शानू के आवाज में। हाँ, और कुमार शानू ये फरमाए थे कि चोरी चोरी दिल तेरा हम चुराएंगे। क्या बात है। जिंदगी आईने की तरह, जिंदगी आईने की तरह है, आईना यानी कि स्पीकर शीशा। जिंदगी आईने की तरह है, ये मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।

से एक बार फिर हम और आप सुनेंगे कुमार शानू की आवाज में, कुमार दा की आवाज में। चुन से तो मालूम हो गया कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

इस गीत जो कुमार शानू जी ने हमको सुनाए हैं कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

उसके इश्क की खनक, उसके इश्क की खनक मेरी चूड़ियों में खनकती है। उसके एहसासों की महक, उसके एहसासों की महक मेरे रूह में महकती है। चाहे कितना ही छिपा लूं, चाहे कितना ही छिपा लूं, आँखों में कहानियाँ, आँखों में कहानी झलकती है।

और यहाँ से आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनने के लिए, और क्या ये फरमाएगा तो हम यहाँ साथ में मिलकर सुनेंगे। मेरे को भी खबर नहीं है।

कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की जैसे। हाँ सुनने वालों दोस्तों भाई बहनों, जी लो इस लम्हों को खुश नसीबों की जैसे।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज इसका शोक

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ते नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे। वाह वाह, क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार पास हो गए। तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से सुन

0: Dostan Wiegeland Jenner.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी, जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते, हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानूं या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में, चुप रहना ही अच्छा है।

उसने पराए घर में जाके अपनी सेज सजाई है। अब वो मेरे साथ नहीं है मेरा साथ निभाने को, मेरे आंसू साथ है मेरे उसके साथ खुदाई है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दें कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आँखों को, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एनखांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब, स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सैदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कॉइंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। Het brengt alleen maar negatieve energie. Het trekt ook negatieve energie. Je hebt wat je hebt gezegd, wat je hebt gezegd.

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है, तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया।

जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिदाख दुच, इस दात वेल खुद इस द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्प गुड फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड ग्लूकोज का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मिदाख दुच लेते थे।

खर्चा लगता है। राम राम बोलो, बहुत अच्छा लगता है। श्रवण की है हमने हनुमान चालीसा के साथ। बढ़ते हैं आपके लिए सुंदर सा विष्णु भजन, आपके लिए प्रस्तुत।

श्री हरि विष्णु हरे नाम से दिन सजे, हरे नाम से दिन सजे, हर कार्य में शुभता बढ़े। विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, जीवन की नैया पार हो जाए। श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब हम हर काम को उनके शरण से शुरू करते हैं तो कार्य में न केवल सफलता मिलता है, बल्कि उनका फल भी पवित्र होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको हम सभी के ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान के कृपा सदा बने रहे।

सुंदर अति सुंदर श्री हरि विष्णु प्रिया जो है उसका भजन आज आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आज के दिन, आज के ये पावन सुबह, आज के ये पावन सुबह आपके जीवन में शांति, संतुलन और सेवा भाव भर दे। जब मन में हरि का नाम और कर्म में प्रभु का स्मरण हो तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है।

भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे आप पर और आपके परिवार पे। ओम नमो भगवान।

आपका इष्ट है, बस उसी में आप अपना मन लगा लो। जिसने अपने आप को श्री नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो ना, कर दिया है, वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान, भगवान विष्णु की कृपा हम सबके ऊपर बने रहे, हम सबके ऊपर सदा रहे। श्री कृष्ण की वाणी, श्री विष्णु भगवान की वाणी है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किया गया कर्मों का फल है। श्री कृष्ण जी की वाणी है।

वहाँ चैन है और विश्वास है, यहाँ से हमने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। मन को निराश ना करो, मन को निराश ना करो मेरे प्यारे, बस श्री विष्णु जी पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो विष्णु प्रिया, इस बात का एहसास तो कर लो। श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से हम सब पर उनका कृपा रहे। जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, वहाँ कर्म, वहाँ धर्म, शांति और समृद्धि का वास होता है। और कहते हैं कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? तो प्रेम का वास्तविक अर्थ ये है, सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी

छोटा बड़ा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका।

जहाँ भक्ति है ना मेरे प्यारे सुनने वालों, जहाँ भक्ति है वहाँ नारायण स्वयं विराजमान होता है, और जहाँ नारायण होते हैं ना वहाँ हर कष्ट खुद ही मिट जाता है। केवल विश्वास होना चाहिए। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में, एक गलती से एक गलती।

में ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, इसलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बुद्धि से होता है, जुबान से सुंदरता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरता है।

छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार पुकारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार प्राप्त समाप्त किया जा सकता है। जरूरत है केवल निष्ठा।

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए है इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुमसा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

यार शानू के साथ में अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका यज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे ओका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

याग्निक की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

0: सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता। के और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं तर्शन द वंडर कार। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ लाला रे।
1: हे यू गाइस लिसन टू मी बेबी से ओ ला ला ला।

From the movie Darshan, The Wonder Car, इसी फिल्म से हमने पेश किए है उल्लाला रे के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल कह रहा है, From the movie दिल कह रहा है से हम पेश करते हैं और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे दिल कह रहा है, ओ जाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से हम पेश करते हैं।

उदित नारायण अलका यज्ञिक के और कमल खान आपको सुनाने वाले थे। चलिए हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मौजा ही मौजा।

0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफ़ी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच क्या

अभी आप सुन रहे थे मौजा ही मौजा, और मौजा ही मौजा के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी धूम 2 से, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते क्रेजी किया रे।

the title from the movie Dhoom 2 से भी आप सुन रहे थे। कैश है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं योर माइंड, माइंड ब्लोइंग माया।

From the movie कैश से हमने पेश किया है यू आर माई माइंड ब्लोइंग माहिया. खाकी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ऐसा जादू डाला रे. आपको सुनाने वाले हैं सुनीरी चौहान.

0: फ्रॉम द मूवी खाकी से हमने पेश किए हैं ऐसा जादू डाला रे, मैंने प्यार क्यों किया। इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल दी नजर।
1: मेरी नर्स पटाएगा

शान प्रिया नीरज और शेषनायन आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया दिल दी नजर। प्रिंस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे लिए। अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

लतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए फ्रॉम द मूवी प्रिंस से हमने पेश किए हैं। बिल्लू है फिल्म का नाम, सुखविंदर सिंह और सुनीरी चौहान प्रोग्राम में आ रहे हैं मर जानी।

अभी आप सुन रहे थे हैंगओवर तेरी आंखों का, हैंगओवर तेरी बातों का। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी काबिल से। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

0: मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। पवनदीप और अरुणिता आ रहे हैं प्रोग्राम में, चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।
1: नहीं है मेरी जस्तजू,

0: अरे अब तो बता, क्या है तू?
1: तेरा आशिक। और तू?
0: अरे वो तो बाद में बताऊंगी।
2: अरुणिता और पवनदीप की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा सॉन्ग। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है मेहंदी का रंग। निहाल और साइली आपको सुनाने वाले हैं।
3: बहारों का मौसम है, आज खुल के इकरार कर लो।

0: मैंने मेहंदी का रंग तेरे नाम किया, निहाल और साइली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्यार करते हैं।
1: हेलो नील, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
2: यार आई एम रियली सॉरी ऐश्वर्या, मैं इस ट्रिप के लिए नहीं आ पाऊंगा।
1: क्यों?
2: लास्ट मिनट बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है।
1: एनीवे मैं अकेली चली जाऊँ।
2: हेलो लिसन,
1: बाय।
2: लिसन,

0: अभी आप सुन रहे थे प्यार करते हैं, शैली प्रोग्राम में आ रहे हैं तुम्हारी चाहते।
1: शमा बनकर जल रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

में है तुम्हारी चाहते, अभी आप सुन रहे थे साइली की आवाज में। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम क्या मिले।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से भी आप सुन रहे थे तुम क्या मिले। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। पवनदीप और अनुनीता प्रोग्राम में आ रहे हैं, प्यारी जन्मभूमि।

अभी आप सुन रहे थे पवनदीप राजन और अनुरीता कंचीलाल जी की आवाज़ में प्यारी जन्मभूमि मेरी जिंदगी है तू।

मेरे नैना, अभी आप सुन रहे थे पवनदीप राजन और अनुरीता कंचिलाओ जी के आवाज़ में हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। सुनने वालों, समय हो चला है

0: अभी आप सुन रहे थे जो पोएगा वही पाएगा फ्रॉम द मूवी जैसी करनी वैसी भरनी, द टाइटल भी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश जी की आवाज़ में और म्यूजिक दिए हैं ऋजेश रोशन जी। सुनने वालों चलिए जब चूड़ियाँ की बात होती है तो मिलकर सुनते हैं कि चूड़ियाँ क्या बोलती हैं।
1: No, the future drives

फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, अभी आप सुन रहे थे। और जरा सा हम देखें, आपको सुनाने वाले थे अमित कुमार, सोनू निगम, अका यज्ञिक, उदित नारायण और कविता कृष्ण मोटी जी। म्यूजिक दिए हैं जतिन और ललित जी। और जबकि चूड़िया की बात होती है तो ये भी हो जाए आप सभी के वास्ते,

फ्रॉम द मूवी यस बॉस से अभी आप सुन रहे थे चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन खन खन माही वे फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो।

0: अभी आप सुन रहे थे माही वे फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, आपको सुनाने वाले थे साधना सरगम जी के साथ में सुजाता भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम और शंकर महादेवन जी, और म्यूजिक दिए है शंकर एहसान लॉय। यू आर माई सोनिया।
1: What's up?
2: Whatever.
1: Hey, but where's Rohan?
2: I don't know, and I don't care. I hate him.
3: But I love you.

अभी आप सुन रहे थे यू आर माय सोनिया, और आपको सुनाने वाले थे सोनू निगम के साथ में अलका याग्निक जी, म्यूजिक दिए है संदेश शंदीलीला फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हम से हमने पेश किए हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए ये हो जाए आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जिनका नाम राधा है।

फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, उदित नारायण के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जिनके नाम राधा है। सोना कितना सोना है, सोने जैसे मेरा मन।

अमित नारायण के साथ में पूर्णिमा जी अभी आपको सुनाने वाले थे सोना कितना सोना है फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन से भी आप सुन रहे थे। कल होना हो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रिटी वुमन।

0: आपको सुनाने वाले थे शंकर महादेवन एंड रवि रेक्स खोटे। सी शावा शावा।
1: हाँ मैं देखता हूँ दादी, आप मेरे साथ आइए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट।

0: बस कीजिए, बहुत हो गया।
1: सही श्यावा श्यावा भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी है हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। कहाँ जाऊंगा, अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम।

0: बाय वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
1: तो तुरंत हम चलते हैं, कहां चलते हैं, एक रीमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों। और ये रीमेक सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं, स्वीट मेलोडी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया। तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया, और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो, और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो, यानी कि इस सॉन्ग पर।

सुकुर अलमंग सुकु सुकु और कोंची सुकु सुकु भैया प्यार के सुकु सुकु के बांची ढो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

लगी है तेरी हाथ रो मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत योपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है, शेकिंग बेबी शेकिंग।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम राजयू फाहन सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों आपको हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी जमचार की ओर, और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर, हम चलते हैं हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर से नाम में खोदे भाई, ना खाली जुका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियन या दूसरा जात या आईम गोल खोले, चिनुआ सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया। तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिक लेके आयल है सोरखन हो परे, सोरखन हो फ्लिक फेल्प उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आय के, यानी कि उतरल है सोरखन हो फ्लिक फेल्प परमारिबो में बेनलान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिव खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिक लेके आयल लोग था सोरखन हो पे 4.5 किलो रिव खोद में से बेनलान से आयल है। और बात में उस सब एगो त्योता फिट्स में बैठले घरे जाई के भैया, अब घरे जात रहा भैया, रास्ता में एगो त्योता आलियोन आयले जेमा 3 गो लुटेरा रहा वापन ले के भैया कटली से ले के, और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गे है रिहती खोम्पर स्त्रांत में। तो पारामारी भूमि का रास्ता का नाम खोम्पर स्त्रांत हुआ पे लेके ही भगल है भैया, 2.5 किलो सोना ले के भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भइल है तो सिपाही खोजबीन करे है कि के सोनवा ली से भैया, यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भाग्य भाई। तो बोले नारे ऊपर फालखिंग से नारे तो खोम पर स्त्रांत अनखिफ्त भइल है, ऑफस्पोरिंग अनहोडिंग बिना भइल है, खाली ऑफस्पोरिंग भइल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताए, लेकिन तुई या ना हल्फ की नो सोना रू 12 ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारा प्रोग्राम में, जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे हम चलते भैया, एगो औरत के समय लाश ले पाई से भैया रवि, और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में, और एक औरत के लाइक मिलल है और वो गंधात रहा लाइक वा भैया, गंधात रहा मतलब कि वो अन बिंदिंग हुई रहा कई रोज से मारा पड़ा रहा हुआ पे। तो जो हुआ सब गैल है तो पाई से औरत के बिना कपड़ा के भाए नंग ढिनंग औरत हुआ पे पाई से, और बतावे फोकस इसते इन्फॉर्मेशन बोले एगो आदमी है अब सुख ना क्रैदन उगैल रहा तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर जुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रैदमान, तो ये क्रैदा गैला अपन जंगल में खोजे तब ये लैकवा पाई से, और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो, और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लग दैट इज मिस ड्राइव इन हिट्स इन दिस मोर्स पेल बोले तर प्लाट्स वेर लीफ लोग से लेखा फन फ्रो आन खतरोफन, और बताई गई हैगा दी इन हु वेर है बतरोकन इस बाय दिस साक वर्ड ना ऑन द सोख। अब सिपाही खोजबीन करे कि कौन के मारी से भैया, बताए फ्रो में तो लिखते हाइट्स क्लियर एन खलात हार, तो ई जुका ना भैया तो इंगी हुई नहीं का बोले ब्रासिलियन हुई कोई हुई, बतावे लिखत है क्लियर एर खलात हार इन दिस साक के फलास नो हिन ऑफिशियल फॉर्मेशन आनगिफ्त गदान। तो कर मतलब उ जुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलिनी हुई बोले चिकन बार है। तो ऐसे बातचीत हो रहा है हमारी जनता, जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है, ओएम भैया ओएम जोन है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आठ बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है। औतियार रहा तो एगो द्रियन त्वेंतक यारख मामशेला ते ओकर नाम रहा तो और बोले हैगा एगो आठ बरिस के लड़का के को स्टीवसोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और ये भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में तो ये लड़कवा के आठ बरिस के औरतिया भोंक के मार ढारे रहा वारा अखें ने वो उनका मन लीफल उसे लिखा फा ये दिन आन खतरोफन और बोले है लाख ऑफ्रॉन इन प्लस ब्लूथ एंड फरतूंदे खीन टेकन फा लीफन लड़कवा आठ बरिस के मर गए रहा। तो आप लोग के शायद याद हुई एक बारे में आप लोग को हम न्यूज में बताए रही और आज ओके यानी कि अब ओके फोर्दर यानी कि अब ओके स्ट्राफ मिले औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले औरतिया के अब बोलियो कि कितना दिन के जहलिया ई पाई से आठ बरिस के लड़का के ई और झका बोले हैगा एक बारे में बड़ा ऑफहेफ हो गया रहा सूरीनाम देश में दोस्तों। तो ई औरतिया के स्टीव मुदर हैगा स्टीव मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के ओप एस करे से जहल पुराना साल 2025 में ई आठ बरिस के लड़कुआ के मार ढाड़े रहा छोड़ी भोग के फोलखस एट ओ एम वास एट दी आफन हेफक ऋषि और स्थान तुसन द फादर फानेसला तो फर और बताए गए हैं अपाउ एंड दिन फ्रेंडेन माशेला आदमी एक नाम रहा अपाउ और एक वाक नाम रहा माशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खनित दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के आठ बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फूतूब देखे ला इतना मोही लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगी ही आदमी कुत्ता बिलार पोस ले वे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस ले भाए और जाए के आठ बरिस के लड़का के पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सो कस्टीव Zoon Raham, uit verklaring van de vader bleek dat de haven aanvankelijk rustig verliep, maar de sfeer omsloeg nadat zijn vriendin zich eraan stoorde dat hij alcohol aannam van een buurman. Bole Auratia, bole tu Adamiak, bole tu kahegele buurman ke daarop hiele watte. Daarna ontstond een woordenwisseling. Bole de verdachte ging volgens de woning binnen en sloot zich op. Getuigen verklaarde dat Auratia vernieling aanrichtte in de woning en een mes uit de keuken. Pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen het ja, jagra kalera, ki okar anamia gela, buurman lage daarupie, or aard bediske lardka ke jaike, jan se maar deze. Lardkwa yoratiak naraha, u lardkwa raha voor andere huwelijk. Met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen. Bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens een medische was er geen sprake meer. Ja, toen Ibari Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पीपा कल्ले से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है आठ बरिस के लड़का के ओ एम एस दर्तक यास तेखन तेखन स्टीफ मुदर फान दोस्त तेखन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के आठ बरिस के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है। तो रोबी गयादीन के साथ है सीफ बी से चित्रा अवतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी हम बहुत प्यार यहाँ से देते हैं। तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिस ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती
रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पुलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथे साथ दुर्योक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले योगदन सफाना में Tijdens de controle van een voertuig trof een agent in de dashboardkastje een transparante plastic zak aan met een substantie die op marihuana leek. Ja, op een 30-jarige bestuurder heb ik gezegd, op een bijrijder heb ik gezegd, ja, geweer middelen, kolf zaten, scherpe patronen, op een ECT heb ik gezegd, ja, hierover heb ik gezegd, op een ganja, panja, piek heb ik gezegd, ja, AOM waarschuwt, cultuur op traditie is nooit excuses voor seks met minderjarigen. Deko bhaiya minderjarig bole cultuur to jane saban bole hamal cultuur me hega ke minderjarig ke sange trou kar sake to jane benaland pe chota chota ladki ke saban biyah kar dewe ya admi ho ya ladka le le to lunju ka ke ladkan ko jano hai to aise baat hai baki bhiya om ka bole hega upambar minister ka bole hega tu chahe jon jat ke baate चाहे जहां जोन कुलतिर के बाटे मु बोले वेत में मेंदर यार के संगे तो के सेक्स न चाहिं करे के तो ये बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते हैं इतना दिन बाद आए हमारे प्रोग्राम में साथ ही साथ फनेसा दोस फनेसा भी आ गया है फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारे उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को तो देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना दुर्कलक बोले कुलत्री त्रादिसी में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करे के द बूस का फॉलक नर आनलेडिंग फॉर अन रेसेंट स्ट्रफसाक एन इट फॉर खरेक ऑफ द बस्केर्मर फॉर मेंदर यारखन ओएम बोले है culturele gebruiken, traditionele en traditionele overtuigingen om familieafspraken nooit worden gebruikt als rechtvaardige voor seksuele misbruik of andere strafbare feiten. Dit doe je niet hega. Deze van kaa bolle hega bolle palwar bolle. Beetje wat gebiak kardi, je beetje wat gebiak kardi. Tu minder jarig baate. Mag niet. O bolle, betaalwe hiya. O hem bolle. Usab excuses na hè. Ongeacht de achtergrond van de betrokkenen. Bolle tu chahe John baate. Bolle wetboek bolle hè. सबके कानून एक है सेक्सुअल हैंडलिंग वार बे स्प्राक इज वन बिनन ड्रिंगर फॉर हिज लिखाम बे एन किंड यंगर दन 12 यार कुनन लेडन टू द गेवंगनेस स्ट्राफ आन मैक्सिमल 15 बरिस के 12 बरिस लड़की से और काबले तू सेक्स के लिए 12 बरिस लड़की के नीचे तो तुके मिनिमल 15 बरिस के जेल हुई से के भैया लोन सूरीनाम देश में तो याद करियो सूरीनाम के वे थे तो हमारे देखा जाए सूरीनाम से सुभाष भगवो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो भाई सुभाष आपको यहाँ से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को तो भाई सुभाष आप तो सूरीनाम देश में हैं तो वहाँ कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जब तू झुका बाटो तो तुके मेंदर यार के संगे माखेगा लड़का बनावे के सेक्स करे के ओएम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग buiten een huwelijk met iemand van 12 jaar of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Daarom staat een maximale gevaarstelling van Bara Bariske en een geldboete van vijfde categorie. Het OM benadrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bolle zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd, mensen. Bolle controleer na hoe, bolle ze van tjoepé और कले वारफान उस strafbaar से बोले burgers ouders familieleden gezagdragers en andere betrokkenen worden opgeroepen signalen van seksuele misbruik serieus te nemen en melding te maken bij de politie of bevoegde instanties बोले तो melden करियो सिपाही में और कि कोई अब देखो एगो यहां बताओ एगो रसेंट साग भाई ले और लुंडा का नाम बा सनाईपी बीते हुए हफ्ता में बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलन शौचालय
भेजिया देखो ये ते इसनाईपी के भैया कपड़ियन जहलिया में भरी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से ओणी का कर ले रहे को 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर 3 यारख में ही एक स्वांगर कर दे रहा ते एकर माई गेल हा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है बोले फिर 3 यारख बोले हम लोग संगे रहे बोले हमार औरत है ओकर माई गे नालिश कर दी छोड़िया के तो बोले हैगा आपके देर तक यारे के फरलेंग भैले जहल में बा और बोले अनफरक्लार इन तेकनो पुलिस से मेजिस एंड फ्रॉ इज एंड दैट इज सिंस हर देर 3 देर लासे में तारीफ और बताई गई है बोले 13 वर्ष के रहा तब से हमें उसे रेलाची है और बोले हैगा बोले है द केनर खाफ अंडर द मेजिक 13-15 jaar en sommige van een binnen de cultuur als vrouw worden beschouwd. Bole tera bari 14-15 bole ze van oké chota ladka ne isna dekhe ko aurat ne dekhe hai vooral wanneer de familie daarmee instemt dat botst echter met de nationale wet waarin iemand pas vanaf 18 jaar als volwassene wordt gezien. To pehle tulun jano bhaiya chota chota minder yaar ke ladki log ke se biya kar de ut raha to aap lon isse bachaye kar rehna जो कोई नालिश करे भैया तो झुट्टे के जइयो 15 बरी जहल में बैठ को और फ्रोईती करियो गाना गइयो ते ही तो अच्छा बात ना है। हम लोग के सुरीनाम देश में इरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो इरमा सुरीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताए गए भैया तो स्कूल में बड़ी बरैया गए भैया बड़ी बरैया गए वहाँ पे हाँ तो बरैया एगो मिलो स्कूल है ऊपर से 2 तारीख के एगो एंट एग्जाम रहा मिलो स्कूल में और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट हुन एग्जाम अफलेखन बस्ता द फ्रीज द स्लाख्त ऑफर वार्डन फन देसर कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलाइजेशन एंड वार हेड बाय इन नेस स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफडेलिंग बताए गए हैगा कमसरियात की करी से और बोले ना तो स्कूल बफेन से नाम उपमार बखराफ प्लास स्कूलिए के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरूइत इस में होगा बोमन और बोले इवन इस इन द पंग फन अख्तर सेड फन द स्कूल दिख्त बखरूइत द स्कूल लेडिंग दूत एन ड्रिंग एन बरूप तो बेरी पेन है और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है तो वही मसे कहीं बरैया रहा और लाइक के लड़कन के काटली से तो लांटी के चाहिए बेरी पेनों सफा करे को इंतजार भैया और हुआ के बेरी पेन बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो और हुआ के बेरी पेन में स्वेरफट भी सूते भाई सफर हमारी बहू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से और लेडिंग पे जइयो से बी के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहाँ हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है लांटी जा कुदीन बांध कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई मा अंदर हाउथ वर्तनी तो वही समय बेरी पेड़ में जनावर घुस घुस बैठे वरफान मैं से वो बीत अलमाल तो वो क्यों सीरी नाम है नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बरुस अंदर सोम मैं वो क्यों तोक दरो फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास पे तो जइयो भैया तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लाते उदार एलक से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगी बनाओ लेने चिकन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पी पइयो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अफस्केट ले पइयो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड तो बोले जो नहीं कम सुरीनाम नहीं फरकलाई के मैं नीदरलैंड ऑफ अंडरसोम मर मेंसे एक से वत द वारहेट इज और यहां पे श्री राम स्कूल के पीछे जंगल लगल है जहां इतना ढेर बड़का-बड़का भूस है और बरैया जाए के स्कूल केंद्र के लड़कन के बड़ा छेदाई खींचे दी से वारफन हुआ पे एंड एग्जाम रहा मिलो स्कूल के
तो सन्नाम के जो रखेरिंग हैं उस सबसे हम बोले ला तरी तुलुन तरी चिक्कन निक्कन करियो जहाँ लड़कन हैं चारों बगल चाहे सफा करें अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी ददमुते योरी जेल्फ खानदून रखेरिंग है पिकत ओवर मेंस मैया रखेरिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे हैं अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे हैं रखेरिंग में तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाए अब देखो दे अनामे भैया का बोले हुआ स्टार्स बखरूतिंग के तो इडेशन सेशन ट्विन तक के बांचित हुए हैं यानी कि स्टांस बखरूतिंग 2026 के वहाँ बातचीत हुए हैं और उतरे में जोगी भैया इरफान तनमी हैं भीषण भरिश से बैठल हैं और जोगी फ्रॉक स्टाइल करे हैगा वहाँ पे रखेरिंग से क्यों सुनी से कि जो खले से हुआ के आदमी लोन पलवार धरे ई धरे उ धरे तो एक बारे में हम लोग के फोर्स जो ने दे आना के और अश्विन अधीन के नामों ही लगल है तो अश्विन अधीन एके बोले तो के बवाई से तो के बवाई से बस इतने में अने का बोले हैं गया दिन मतलब कि अधीन जो फोर्स अश्विन अधीन हैगा देना के और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के बस जोगी बोले है उसे बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के बोले कि तू सोचे सो मान बोले रहा कि तू सबसे सलेक्ट देना फोर्स बाटे तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया बोले तो कहीं यहाँ पे न उड़क तो अंतरिम कर दे इसे बोले नहीं तू माफी मांग तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन ची का माफी मांग बोले माफी तो तुके चाहे मांगे के तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फॉर खान साल फॉर लातन अब बोले फिर यहाँ पे फरवेट अधीन पार्टी दख बाओ अब तो त्रिदेने ओपुसी ले ने बोले कि जब ओकर आदमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जब कुछ करे तब बोले ओके ना बोले और दो अब दस आके बोले लाच खून प्रात अब बोले जब हम एगो बलंग रेख पूछ तब बोले बेर हमें काटे बेर हमें काटे है और बोले कि जो ने हम अब स्थान पाए ग्रुफो आई क्यों हमें निकाल के बहरे करे बोले वही चीज बोले जानबूझ के करी से जोगी स्टेल दत अधीन द फोर्सेटर स्टूल सो मुतर फरलातन आसे द पार्लियामेंट नीट ऑफ एन करेक्ट एंड ऑन पार्टीडिक वेज कैन लेडन दार भी बना दुक्त रहे द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफ्कस्लोटन एक बेन नोग नी क्लार मेट दिस साक तो ई बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बातचीत हुए है हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रह गए है विश्वास ना रह गए भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तलोन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया अभी यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि सिपहिया घूस लेवे है सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृश्य के साकोक में तब मैं वहाँ गए है सिपहिया लगे बोले हमार बेटुआ के तू छोड़ दे बोले तो के हम पैसा दे बे ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा दे बे तो ओके बोले है 2500 यूरो

हाँ दोस्तों, तो बोले 2500 euro बोले चाहेगा ओके देवे के औरतिया बिचारी अपन बिटुआ के छोड़ावे खातिन 1250 euro ओके दे से zij maakte daarop 1250 euro over met de afspraak dat het resterende bedrag zou worden betaald zodra haar zoon was vrijgelaten. Afspraak raadje bij hem over makrela 2500 euro wat ook db en 2000 euro wat ook db maar je bent wat chod jij tip bakke ee bericha dirwa bent wat ke na chod op chod paai se maloom na hai kahe khatin bakke u na chod pa hoi se ke ओकर ऊपर अदमीरा होई कुछ कारण इना छोड़ पाए से 2 तारीख जुली के और यानी कि इसको तुआ कुछ ना कर पाए बेटा हुआ के फॉर द रेक्टर चल गए हैक नखनेस फन देर तक दाखन इस फरलेंग अब मम्माई भैया बहुत तलियर खस्ताल तो गए तब इसको तो बोले जे तू हमारे बेटा हुआ के ना छोड़ाए पहले भैया हीरा तो हमारे 1250 इरुआ लौटाड़ तू जाने हैं कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो हुई के अंते चल गए ओहु बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब सिपाही वेकर कर रोके हम ना देबे 1250 इरुआ बस ई औरत काके बगैर अनखिफ्त कर दिस अब देखो भैया चकल्लस जे अनखिफ्त करी से भाई बस ई ब्रीखा देर के ओही के कोलेका पकड़ के बंद कर दिस और 2 तारीख जुली के चल गए ओए में भैया चीजवा फॉर द रेक्टर चल गए हैं और बोले ना द अफटिंग में द ओए इज इन फॉर ही फॉरसीग्रिंग कस्टेल्ट जोन जहलिया में बिरखा दिरवन दूसर कोई के बन करत रहा अब अपरे जाए के ओमा बन है भैया देखो अब तू घूस लेवे तो भाई बताए सिपाही लोन हुआ बड़ी बनमासी करे है जेके तू सोचियो सूरीनाम देश पे कि सिपाही हमार बड़का कमरात है हमार बड़का दोस्त है हमें बस करम करेगा देखो वही सब कौन कौन धंधा यहाँ पे करे है तो गीता जी भी आ गए हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर जुड़ गए आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई इतना रोवे है कि हम काम बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुईया है तो बांची धो रहा ये औरत के बिचारी के और ले गए है एक आदमी पेंशन में तू जाने तो कहाँ पेंशन वन है भैया हीरा सूरीनाम देश के बांची धोवे है तो ले गए पेंशन में भैया और ये लड़किया के ले गए औरतिया के और इना है कि बहरे के औरत है या कोई रा ओकर फ्रिंदेन रा भैया कई बरिश से संगे यानी 5 यार के उस सबके रेलाक्सी रहा 5 यार रेलाक्सी रहा और ले के पेंशन में तो यौरतिया के हुआ झगड़ा भइले तो अनमिया यौरतिया के बारे में संदलन करी से भैया पेंशन में परमारी बहु में और बताए गए हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा और बोले इन खते औरतिया रोवत गले रिसेप्शन लगे और बोले हम में तो सिपाही है स्काकल कर तो सिपाही गए है तेर प्लेक बोले हैगा अरे फिर द फरत्रोकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ के खतेखर फ्रकलार दे तेखन उपदर रक्षी बोले द फ्राउ आनखाफ की 5 बरी से मरे लड़ाची बा वाद आन लेनिंग फोर में सांदलिंग ना बताई सिपाही आवत आन हमें जेना दोनों में फिन सुमत हुई गए भाई वन दोनों फिन चल गए सिपाही कोई के ना पाई से लेकिन न्यूज में तो आई गए है दोस्तों ती बड़ी बड़ी दुख के मां थे यह अपन फॉर होल्डिंग में ईमान यो होल्ड फॉर ईमान झगड़ा लड़ाई हुए है मैं इतना कि ना तो कोई के मैं सांदलिंग कर और कोनो कोनो कोनो चाल है भैया और मैं सांदल करिए पेंशन में अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बुड़किया क्वारंटाइन और गयाना के हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफोर्स के मैनेजर है तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से
हाँ तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं अपना समाचार। तो हम जाए भैया गायाना और क्वारंटाइन की ओर, हम जाए ला निकेरी के ओर भाई, निकेरी के ओर हम जाए है। तो आप लोग जानो है चांद संतोखी मात रहा बुड़की बनावे और बुड़की माता बनावे निकेरी से लेकर गायाना में, बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई बुड़के लेकिन रखेरी लोन जो रहा बहुत क्लाख करता कि संतोखी मांगे बुड़की बनावे बोले रास्ता बनाओ ई बनाव कि अब सिमोंस और एनडीपी रखेरी एनपीएस रखेरी जल्दी से तीस बोले है बुड़किया चाहे दोरो बने के, बोले बुड़किया हम लोग के चाहे बनावे के। तो अब बात ई चीज भैले सिमोंस गैल है और कहा बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि बुड़किया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के।

चिनुआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर हैगा, ओवी दया नाम का बोले है, मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है, नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया बोले गयाना ना बोले फ्लोरिडा बोले हम नून बना कोई सरनाम के आदमी बनाई बोले हम लोग गयाना से पैसा बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे ई बात बोले है चिनवा ओवे के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में बोले हम लोग अपने बनावे बोले अपने तौल धरबे एकर बारे में इरफान अली जो है इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली तो वो बमकल की ई कौन भाषा है वहां पे असेंबली में समय बतिया है बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जो है गयाना के बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना बोले ई जौन मांगे बोले दे बोले हमसे अस्परा के प्रेसिडेंट से सरनाम के और वो हैगा सिमोन से और बोले हम लोग के अस्परा के संघे बनावे हम लोग तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है बोले ब्रुक्की चाहे खसामलक बनावे हम लोग के तो असेंबली बकेन करे बोले फलीरक हम लोग के मेडल से बहु हुई तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोकिया बनावे बोले बौशे ब्रोक के तुल अपरे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सबर खाई पी के बनाए बोले यू मांगे पैसुआ बनावे का की मांगे अकेल बनावे वो जो चिनुआ आधा पैसा मजे गया ना जो आधा दे पैसुआ तब तो तुस लखवा ना बनाई पाइये यू बतिया है तू सलखवा ना बनाई पाइये तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रोकिया बनावे सलाख मांगे बनावे का तो गयाना के रखेरिंग बोले है का बोले हम उस तांतमेंट हाउद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रोकी गयाना से बोले हम लोग मिल के बनावे बोले परमारी बिफ ऑन फंगन ओवर मोगल का कुछ वे सकिंग ऑन दंस द बरिख तें सिरी नाम द बरिख फॉलीडिक सेल्फ विल फिनाशियरन एन बसितन बोले उसे मांगे अपने बसित करे अपने मांगे फिनाशियर करे और बोले है संग ही फिर खियाना तोर फ्रागन गलेद ऑन दैट द ब्रुख tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obolehega Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. तो एक बारे में जैसे जैसे रही हम बतावे बोले है जेनिफर सिमोन ही वखरी पंदर सुरिनाम बेशक वास डील फॉर बस्तांद यूरिडिस कादर अफ्तरोंद तरवल गयाना से आदमिनिस्ट्रेटिव फॉरबरेनिंग आल हाथ अफ्रोंद और सुरिनाम में कहा भैया आदमिनिस्ट्रेटिव ठीक से हुए है वहाँ पे एक गो कम करते हैं एक गो आदमी डेवलप तीन तीन गो सलारस है कितना आदमी बैतलांत में है और ओकर सलारस एक भाव है और वो आदमिनिस्ट्रेशन ना जाने का कि रमिया कहाँ है काम पे

स्टडी से टेलीफोन नंबर बोले चुगुल खोरवन बोले बतिया मत तू जाने भैया चुगुल खोर बाड़ा ढेर दुनिया में न अपने खाइन दो दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया तो बोले बतइयो तो ऐसे बतिया है। अब देखो ब्रोकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रोकी रे भैया छोटा ब्रोकी ना है अति से ब्रोक फन 3.1 किलोमीटर मुड फॉर आउट द फियर फॉर बीइंग तुसन सोद्रीन एंड सुरीनाम इन मोलिसोन क्रीक इन गयाना फरफांगन। यहां बताए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क हसीन अल बलानाई के फॉर हैंडल टूरिस्म रुखियाल रीजनल फॉरबिंडिंग तुसन फ्रांस गुयाना एंड ब्राजील के बारे में भी है दोस्तों। तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम बोली ब्रोकिया के बारे में बता दें वन केरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के न गए है दागे इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकाल के फेंक दे रहा दोस्तों माइक बैनर अलवेर। तो सिपाही भैया ना गेल है चोर के दागे अपरे के दागले भैया सुरनाम के सिपाही के बात बतियाई ला हमार जनता बोले जानी ये मुदीनी में से नहीं लख है हम नु सब के ना इट लख करी भैया जैसे समाचार तो बताइला तो बताओगे 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपन पिस्तौल से अपने आप के दागरे से फरकलाद दा था सुन दोड नारकोटिका ब्रिखाद वास आरकोहल द नादा थे में ड्रग्स इंसान बसी था सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका ब्रिखाद जो ड्रग्स के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से बोले द फ्राउ सोफिया फिया हैबर फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेय फुटन सोडन वार्डन इन क्रिस्टल आसे 2500 euro aan de politie betaalde. Nou, te ihe, ik wou bij jou kabelen, hè? पैसवा वाला लेकिन जो सिपहिया अपने आपके दागिशों का हैसला खवैल त्राभाएं और जाए के दागली से अपरे के। तो दोस्तों और आगे को हम जाना चाहते हैं और ये बात है आदमी बड़ा जोर कसीनो जाए सुरीनाम में भाई हाँ कैसीनो में भैया तो एक आदमी गए कैसीनो में बड़ी ढेर पैसा लेके भैया एक ताज पैसा लेके गए कैसीनो में और जो गए कैसीनो में उतना ढेर पैसा लेके बस कोनो कर तस्वीर मार दी भैया तासन में खरोट खल बराखन खस्तूलन फन कलांतन इन द कैसीनो। अरे कैमरा है माँ भाई कैमरा में चाहिए अपे को दरियन दर तक यार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले होकर ताश जमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रांड में बोले हुआ से सबन चुराली से बोले जमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा बोले हम खाली तस्वा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट। अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तो के लगल हैगा टॉयलेट तो अपन ताश छोड़िए तो तस्वा जो छोड़ी बस दूसर कोई मार दे इसे चिनवा तू गधा बाटे कैमरा बेल ब्लैक दत मान द टास ऑफ सेंस को था एंड दे इज अ टेजस दी लाम रुलेट ऑफ द ग्रोन लिट फॉलन एन अंदर बसुक दी अख्तर हेमस्टोन हिव द टास में सेन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर फॉरफॉल्क्स मी फन दोर गगान familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum ik er waren met khojbin kare de chino wa kal bana raha aur bole palwar na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya to yahan bataye gaye hai dar bhai 5000 sd bait gemaakt batawe hega afgelopen manger ke aangifte bhail hai dit keer werd een klant in de casino een 5000 sd bait gemaakt. ओक दिन अंडरसुक के संबंध से दो ही राइन चोरी हो चुका है भैया बीते हफ्ता में वहाँ पे 50,000 ऐसा दे भी चोरी हो ही गया रहा। तो ये है हमारे भारत जनता हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दी अब एक को गाना ना सुनाई ली है और कौन गाना सुनाए वो चटनी हम जाल सुना

दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा भी साइड और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और तो अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो के बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पेयल फ्रैक्सी फोर से तो रहा फ्रैक्सी ने लाइडर रहा तो ये आदमी फिर यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल जाए। अब फिर यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले अब एक के का बोले स्टार्स बस्कुल हिंग में मिलल है मुतर बेरे ओएम खान। अब बरोन तो का करे भैया अंदाज बहुत रख करे हैं एगो लेस ले फर करे से दे आना के जेमा 200 नाम है स्टिक थिंग के और बोली से कि जेमा इन दिन द नेशनल बोले पेयर बवेर द एयर द दैट वाज स्ट्यूड्स इन होप फॉर सीस लीडर फन ऑफ हैप्पी देज द फोर रखे प्रयोग फिया स्टिक थिंग दसन को जगह ले से और बोले खाली 1000 डाला भरी से बोले अब कौन ची हुए ना nuanceer de hey zijn eerdere uitspraak en stel dat hij de grondconversie door een bepaalde partij werd gebruikt om witwassen te faciliteren. Volgens de politicus gaat het om een eerste dossier en zal hij stap voor stap bolega septo ke batabe en ik er baare me je minister se van grondbeleid ke poochie se te bole abbe kuch na haiga jono sabke bewijs se ik blijf er bij de grondconversie door een partij werd gebruikt witwassen van de faciliteit. और बोले है एक बारे में फिर यहाँ पे फ्रैक्सी लीडर आशीष कुमार गयाधीन बोले है बोले ये बहुत एरस्त का साक है जो समो हार्जो आन हाल दर खरोन को फिर से दुर्बपाल पड़ते ही वेर खबर आई फॉर द वेट वासन वाली दो इलेक्ट बोले फिर यहाँ पे के आदमी खाली जगह ले से एक बारे में दे एना फोर्स इधर अश्विन अनभीन बोले क्वालक दत है सोन इस प्रक में से हमर ही फलातन पसीरन अब बोले इतना बड़का मस्कुल लग करी के फिर यहाँ पे लोन ऐसे करी से अब बोले अश्विन अनभीन बोले कुछ रा बोली से बाकी जोगी ये को चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन ईयर लग में से एक बारे में मिनिस्ट्री स्टैनली सूरो पावीरो जो खरोन खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिक वार ओवर सम हार जो है थी नोख ऑन द सोक मुतन वार्डन बोले बेचारे सब ऑन द सुक हो के अब बोले लाइक के एज लेजर दिस ओही के आदमी अन खसिन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो से ने खफाल वर बे कॉन्फेर्सी heeft plaatsgevonden terwijl er rechtszaken gaande waren. Dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. Toen je baant hij zo'n harde kebetoie. Bronto, bhaiya, Bronto zit onder 4 mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer. Want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje, bhaiya, kuketra paisa, fraudeer kadisega. Dus dat zijn de zaken. Op deko, bhaiya, Tulonjano, Suriname, je stroomke paisa na bharie, de kaarten met kelwaarda kare, bhaiya, aike kaart dewe, baki de grootste one betaler is de overheid in Suriname, je stroomke paisa na bharie. Asa, de stroomke paisa na भर आई के काट ना देवे है बोले हम लोग काट इस्तेमाल हुए ना आप है बाकी यहाँ बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईबीएस के स्ट्रोम खबराई के कर पैसे ना भरे सेफ कोमा फेफ फिर तक मिलियन एसर दी अख्तर स्टंट है का ओवर हेट ईबीएस के भाई इस द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर और बोले एक बारे में अने मिनिस्टर En bole he interim van de natuurlijke hulpbronnen wat eigen je he bole he gaan de wet staatsbegroting 2026 meker waren me vitalize ki ABS inmiddels 745 miljoen bole he na paise volgens huurbedrag de achtste staan bij de ABS en bole huur benadrukken dat de overheid alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betalingsachterstand weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de plichting. De Oesap bole he otra paisa bole na paise.
TBS भैया, और जो तू वहां पे 10 रुपया ना भरिए तो आई के ब्रॉन पे आई गए लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे। और ऑफर है कि सिर्फ 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है। तो ये बात है, तो हमारा बहन मून नारायण भी आ गया है और वो है पथवानी का से दोस्तों। तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए चलो जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 जनवरी का अमेरिका वही घर में मच्छर पकड़ ले गया रहा तुलन जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बवंडल चल रहेगा और बेफेंग हैगा, बहुत ढेर आदमी मर गए है, हेल्प खोजे है। और हम मदुरा खाली मांगे वहाँ पे निकले अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रेक्साख बोली सेगा, बोले अब तू पैसा भर, एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपरे है रेक्साख में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 थोप दे इसे। बोले हैगा 5 लंदन के ट्वीट जैसे सीफन 3 में ट्वीट जैसे 21 में आई काबले मदुरा अपद्राख दे इसेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंदन के डाक के माधारी से एक्सक्यूजर करवा इसेगा। यानी कि मदुरा अब एकर बाग रहे में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस अब खपा के काराकास वो कर ऑर्डर के पकड़े रहा 3 जनवरी में अमेरिका से त्रुप कर घर में से ले गए रहा एंड एक पर वैदा नाना डफरे ने साथ एन ओख फरा एंड से सीएस दिल फास इन न्यूयॉर्क वार बेडन हिस्ट्राफ साकन अफवाखतन से है वही जनवरी बेहद इससे फर्स्केने फुद रखतन अनस्कुल्लग प्लेट। तो यहाँ बताए कि बड़ी लंबा चौड़ा होकर बारे में निकले दोस्तों, लेकिन मदुरा के बारे में हमें इतने बताया। अब जब ओके एसक्यूसीसी के बारे में हुई तब तो और बड़का बातचीत हुई भैया। देखो गया ना छोड़ो हम जाए तरी नाफो के बारे में, नाफो भाई नाफो उक्रेन के सीफन तक मिलियार्ड फ्राई करी सेगा तो ये देर तक लंदन नाफो के इस अंकारा में बताया सेगा कि सीफन तक मिलियार्ड पैसा देगा उक्रेन के और का बोलेगा जो रसलान से लड़िया के अंडरस्टैंड करे के फील फॉर द हेल्थ इस ऑल द यूरोपियन यूनियन ऑफ द लंदन ऑफ सोनलक बलोव मार उक्रेन से बन खनोते विलन उक्रेन verzekering van een gestage stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Ortolonjane Madura banai zo een barca fabriek bij ja, daar pe drone uraave he, en drone uraai uraai in Rusland me, waar ke olie raffinaar de rij me, dak ke plata kerde ise, en aanj Venezuela jon etra barca export land raha. तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रहेगे है भैया बेचे के आदमी लोन 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रई में खड़ा है। तो लोन जानो एक जमाना रहा सूरीनाम में भी हम लोग रई में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सूरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रही बातचीत है। तो ये बातचीत है हमारे

ओहो जब तू मेरा नाम ना हमारा नाम ना जाने। एक बार फिर कहते हैं जॉनी है हमारा नाम और सॉन्ग है रामदेव चैतू का। आते हॉट सॉन्ग मोख जल्दी वो कमेटी का डांस मेंज़

हो जा राम नाम का पकालो भी और क्या मनाए मायामी और रखा राम देव चैत्र के कुछ रीमेक्स ऑन आपको हम और सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पारी करो रेवती राम रूप का गाया हुआ ये और सॉन्ग है आओ मिलकर लातवे में बीच खान घूमे घूमे।

पारी करो ना बोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जो का शो का।

राम रूप के आवाज में आप लोगों ने सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दू रे में। इस बैठक गाना

0: और मैं रमता जोगी राम के बाद में। दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं, और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन बयाओ हॉट चटनी जोंग जल मोहो कमे चखा दान जमन से हम एक खान जुएंगे और राल वार ये ओग बैंड मख वेल अलमाल अलेन बे रेडियो फाहोन।
1: दिनवा कहाँ गवायो ना,
0: ओहो कहाँ दिनवा गवाईले है,
1: दिनवा कहाँ गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रतिया।

वो है रसिक रसिक रसिका दीनदयाल होट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैतू।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में है चाहे जोन ऐसन देश में है, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों। ओन दफ़ा यू खा सह एक बेन खबोर इन यू खाद या एक बेन फन हीर एक बेन फन दार मार और स्प्रोंक लग हीर फिर मैं सह ये बेन फन इंडिया ने या नो मैं फोर ऑर्डर्स वेल एंड दार मार के सीकर ट्रॉस ऑफ सैन मैं से सो खाते तो यू मार खत सीकर ट्रॉस ऑफ सैन तो सुरिनामी जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों, आओ एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये सॉन्ग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओस कलाकार या सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं। और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मीन्स en laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice of Vires Uditram, Nisha Madaren, Auro Amadali, Surinder Sutal, Faris Barsati en Yadgar Orchestra gestaan. Je giet ko je sab gaiet he met alles drop en dran. Chutney masala laga ke raus suna jai.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिश राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिश राम खिलावन इज ऑन्स टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिश राम खिलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुट ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और बेंसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितने लोग के आपको फीलिंग है, तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह। कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं, वो भी एक हम रख देते हैं।

यानी कि गुरु दत्तकला सिंह भी एक सूरीनाम का और बहुत बड़ा कलाकार थे, तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्तकला सिंह क्या है, कौन था। तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के।

पुराना कलाकार है गुरुदत्त कल्ला जिंग का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

भाइयों को जो भारत से आने थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदर्स दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मा सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरनाम।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोरा ना दिल हमारा।

और दोस्तों तुमको देखा तो क्या हो गया है और गया है और

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बुलाइस्त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बतंत, जहां पर भी जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैथिली लश्तर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो या एक इवेंट ऑर्गेनाइजेटर, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आज श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंटोर यूरो अपने सीफन तक द्रीफन से तक, या तो आप तार करें अपने सीफन तक द्रीतों से तक तक पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंतुनोखें लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने सीफन तक द्रीफन से तक ट्वेंटी फेर तक पर, या तो अप पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। हेट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा भाग हमारे सरनामी संगीत का, और वो है कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, पुराने जमाने के महान गायक IDR 5 6 7 8 मैस्त्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आ जाओ जाने मन गीतों से मैं तुझे बुलाता हूँ। अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्त्रो हफीज खान वाहिद हुसैन विथ हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। एंजॉय।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का एडीआर 50, 60, 70, 80 मैस्ट्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह। म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय हफीज खान वाहिद हुसैन विद हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। अगला बयान सुनाने को जा रहे एक अति सुंदर डुएट है, तो ये हेल bekende en beroemde zangers en zangeres uit de jaren 70-80. The man with the golden voice from Holland. Talat Mahmoud Kiawazmi, Kya Gata Tha. Wim Demri en Gerda Sukram Milke sunate hai aap sabhi ko. Gori Chalo Na Hans Ki Chaal. Beautiful song special aap sabhi priye priye shrotaon ke naam.

की सेवा में पेश किया गया गाने वाला था महान गायक एडियर 70-80 विम दमरी और खेरदा सुखराम। एक और महान गायक आप सुनेंगे हमारे सूरीनाम देश का, जो काफी मशहूर हुआ था दादा हेमंत कुमार के आवाज में, और वो सुनाएंगे आप सभी को बेकरार करके। महान गायक एडियर 50-60-70 दौलत जुमराती।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को, सुरिनाम देश का दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में गाने वाला डिग्रेट जुमराती दौलत जुमराती। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को दो मशहूर गाने वाले हमारे हॉलैंड देश का आई डी आर 70, 80, 90 द ग्रेट गाने वाली सिलवा के माय से बहुत ही मशहूर हो गई थी और बाद में ढेर सारे सुपरहिट सॉन्ग्स गाए। स्टार्ट में हर करियर में सेमी क्लासिकल ग्रुप फॉर्मासी इशारा देन हाग लाटर गसॉन्ग फॉर द इंडियन डायमंड्स मस्ताना पांडेरो एटसेट्रा एटसेट्रा en ook heel veel live shows gegeven. De Melody Queen uit de jaren 70-80 van Nederland, Indra Ramcharan, zat de Rahahe Mashure Ganewala, begonnen op de drums bij Mastana Orchestra, later doorgebroken in de Indian Diamonds. De great singer Shahid Wahid Hussein, deze twee op hun best. मिलके सुनते हैं जाने चमन।

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। गाने वाले थे शहीद वाहिद हुसैन और इंदिरा रामशरण, म्यूजिक बाय मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। डेज टू ऑप सिन बेस्ट आइडियार 80। समय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम। और आगे देखा जाए, कुछ बदलाव लाऊंगा प्रोग्राम में और वारा के मुताबिक कुछ नए नए आवाजें और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आ रहे हैं आप सभी के खिदमत में इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। साथ दे रहा है इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द मैन विद द ब्यूटीफुल वॉइस द ग्रेट जुबिन नौटियाल। ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। म्यूजिक कंपोज बाय जावेद मोहसिन एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग इज रिटन बाय रश्मि वीराग। पास तेरे मैं, आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और गाने वाले थे जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जावेद मोहसिन के साज और संगीत पर लेखक रश्मि विराक के अल्फाजे। अगला बयान तू है ब्यूटीफुल सॉन्ग कुछ नए आवाजें आप सुनेंगे। इस जमाने का मशहूर गाने वाला दर्शन रवाल और प्रीकीर्ति गिरी ने मिलके गाए हैं ये थी सुंदर बयान गुरप्रीत साइनी के अल्फाजे। म्यूजिक कंपोज बाय दर्शन रवाल और लीजो जॉर्ज। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

तू है। इस जमाने का मशहूर गायक दर्शन रवाल और प्रकृति गिरी के आवाजों में ये अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना। गुरप्रीत सैनी के अल्फाजे, म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय दर्शन रवाल एंड लीजो जॉर्ज। तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के मशहूर मशहूर लोगों, कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों ने मनुष्य, मेंस हेल्थ, इंसानियत के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ तो इन बातों से हम लोग जरूर सीखेंगे, तो ज़रा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था श्री मार्कस ऑरेलियस। हे वॉज़ एन रोमेंस कैसर एंड लीव्ड फ्रॉम 121 टू 180 फोर क्रिस्टस। और मार्कस ऑरेलियस ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, नर्गंस कान एन मेंस सिख रुस्तिगर एन ऑनगेस्टोर्डर terugtrekken dan in zijn eigen ziel. Zeebad. Nog eentje van Marcus Aurelius, Purane Zamanica, Romeins keizer, 121 tot 180 voor Christus. O Marcus Aurelius, nekahae manusje kebarme aroki. De mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum. महाज्ञानी श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओक द आइटफिंडर फ्रॉम द एटॉम बॉम्ब, लीव्ड फ्रॉम 1879 टॉट 1955 एंड हाई वाज एन ड्यूच अमेरिकांस नेचुरकुंडिगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, एन फ्रॉम द स्टर्कस्ट मोटिवन दी द मेंस नार कुंस्ट एंड वेटेंस्कप लेडे इस द ऑन्सनापिंग एन हेट अलदाग्से। महाज्ञानी श्री बुधा भगवान, बुद्ध भगवान जी ने कुछ कहा है भी, ढेर बातें कहे हैं इंसानियत के बारे में। इन फंसेन सीतात श्री बुधा है वॉज एन स्पिरिचुअल लीडर खबोरन और सिद्धार्थ गौतम एंड लीव द फन 370 टॉट 450 फोर क्रिस्टस। अब बुद्ध भगवान ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, सोअल्स द अकर बदोर्फन वॉर्ट डोर ऑन क्रोइट सो द मेन्स डोर सैन बखेरतन। सो

0: De krachtige stofzuiger van Dyson beschikt nu ook over een dweilfunctie voor harde vloeren. De nieuwe roterende dweilborstel.
1: अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, खुदा तेरा भी है, डिग्रेट सोनू निगम और ब्यूटीफुल गाने वाली दीपाली साथे के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, शबीर अहमद के साज और अल्फाजे। एक और मशहूर गाने वाली उभरती हुई कलाकारा जो काफी नाम कमा चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, कांजीलाल, अरुणिता कांजीलाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ कॉफर्ट सॉन्ग्स, जिसे आज फिर जीने की तमन्ना है और ढफली वाले।

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है दप्लिस रेडियो पर एनाटिलिक उक्त बुलेस्ट रिफिया इंटरनेट के लेर द्वारा फाहुन एफएम पिंटेनल पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतुलक बदंत, जहां पर भी वो जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थेल फील लजतर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप ऑर्गामन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेटर, ऑर्गा वुमन ऑफ, आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा, एंड यूरोप के कुछ शहरों में द प्लस रेडियो द्वारा आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम सुन सकते हो। तो आपका जो भी इश्तिहार है, या तो खास फरमाइश हो, जरूरी खबर हो, तो तमाम लोग सुनेंगे। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है अब मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप दायर करें टाइडेंस कंटोर यूरोप नौ 2 3 5 6 8 9। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 0 6 2 3 5 6 8 9। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी साथ ही साथ मेंबर बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक सेलेक्ट किया हुआ हूँ और आज सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंडिश रोटरडैम शहर का नौजवान कलाकारा मशहूर गाने वाली रोशना बालगोविंद जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे हसरते। एंजॉय द म्यूजिक।

0: रोशना बालगोविंद हसरते, उभरता हुआ कलाकार हमारे हॉलैंड देश का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग है, डेमियन और एशली मिलके सुनाते हैं सेलेक्टा बीट्स के साथ पर प्यार तो एक दिन होना था।
1: सेलेक्टा एंड जेरी बेस कॉन्सेप्ट

Beautiful song, wonderful song, covered song by Damien and Ashley, Piarto ik din honata, music by maestros, King Selecta. Agrabiane, ki terf, berte hai yaro jortur se sarnami Indian pop music aap sun rahe hai kuch bhadakta hua, kuch shows मिला कर लाया हूं आप श्रोताओं की सेवा में एक अति सुंदर बयान द चटनी ब्लैम फ्रॉम सुजल उमराव आप सुनेंगे क्या बात है ऑफिशियल वीडियो फ्रॉम 2024 ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल

हायरे हायरे बलमुआ, नया चटनी ब्लैम बाय मशहूर गाने वाला सुरीनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट सुजल उमराव। कितनी सुंदर मजेदार सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं की सेवा में, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में किंग सेलेक्टा को, और वो सुनाते हैं भैया की छावड़ी के बबाल।

Ja, wat hey, beautiful song by King Selecta 2024. Chauri ke babal. पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाला इस जमाने का शर्विन तेजू को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को मिगारो।

मजेदार सॉन्ग है, चुगलखोर मत बनियो यारो। तो आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। दूसरा भाग इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम। लेकिन अब वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आजादी, फ्रेय है छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये अशोमिल लेकर के इन बातों से जरूर कुछ न कुछ हम लोग तो सीखेंगे। जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है यारो फ्रैंक फ्लॉयड राइट है, वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड लीडर फ्रॉम 1867 टू 1959। और फ्रैंक फ्लॉयड राइट ने कहा है आजादी छुटकारा के बारे में यार कि फ्रीहेट कॉम्ट फन बिनन। आगे में कहा श्री विल रॉजर्स है, वॉज एन अमेरिकन एक्टर एंड ह्यूमोरिस्ट, लीव्ड फ्रॉम 1879 टू 1935। और विल रॉजर्स ने कहा है आजादी के बारे में यार कि फ्रीहेट वर्कत नीट सो गुड इन द प्रैक्टिक अस इन टूस्प्राकन। आगे में कहा श्री फ्रांस जानसन है, वॉज नीदरलैंड्स कबारेटी एंड लीव्ड फ्रॉम 1925 टू 1991। और फ्रांस जानसन ने कहा है आजादी के बारे में यारो कि वनेर ये अस मन अन हैट टोनेल बेंट बेन ये ऑफ एन होमो ऑफ एन वेवन डीफ, द एनिगे फ्रीहेड डी ये गलातन वर्ड इस डीसे, ये मग सेल्फ किसन। आगे में कहा श्री आइरिस मुर्डोख, सी वॉज एन Is Brits filosofe en romanschrijfster en leefde van 1919 tot 1999. Our Iris Murdoch nekke hi hei azadike barmeyaroki. We zijn allemaal een gevangene, maar onze genezing heet niet vrijheid. Agame kahi hei Sri Rosa Parks. Zij was een Afro-Amerikaans politiek en burgerrechtenactivist en leefde van 1913 tot 2005. Oude Rosa Parks, Gene Cahie, wel eentje om in te lijsten, jaro. Ik zou graag bekend willen staan als een persoon die zich zorgen maakt over vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en welvaart voor alle mensen. Kja, wat wacht. George W. W. Bush. Hij was de 43ste Amerikaanse president en geboren 1946. Oh, George W. Bush, je kunt democratie en vrijheid niet terugstoppen in een doos. Jean-Jacques Rousseau, hij was een Frans schrijver en filosoof en leefde van 1712 tot 1778. Oh, Jean-Jacques Rousseau, laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen. Ook een hele goede. Ethel Portnoy. Zij was in Amerika geboren Nederlands schrijfster en leefde van 1927 tot 2004. Ethel Portnoy nikahe azadike barimiaruki. Misschien is het wel helemaal niet zo goed om in alle openheid en vrijheid te worden grootgebracht zoals het tegenwoordig gebeurt. Want waar moet je je dan tegen verzetten? Waar moet je je dan jezelf en de waarheid op bevechten? Agamika hai mahan gyani श्री बराक ओबामा जी, है वॉज द 44ste प्रेसिडेंट फन अमेरिका।
geboren 1961, uit Barack Obama Nekahahei Azadike Warmearuki. Vanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van ons land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omgang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen. En dat is democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop. Ook eentje om in te lijsten. Agimikasi Charles Gainsbourg. Hij was een Frans dichter, zanger, componist en acteur.

शाबाश जबरदस्त नगमा नूरी एक्स मैशअप आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया ऑफिशियल वीडियो आउट 2024 मैस्ट्रो संजय जोधा जी के मधुर आवाज में म्यूजिक बाय एक्सक्लूसिव। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मेयर बकैंथास मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम कविश कालका जी के मधुर आवाज में आप एक जीवन का नगमा सुनेंगे। लेवन स्लीत एक प्यार का नगमा है ऑप्शन के स्टाइल फ्रॉम सूरीनाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग एक प्यार का नगमा है, कॉफरेट बाय मिस्टर के फ्रॉम सुरीनाम, कविश कालका जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये चीज सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो आज का इस सीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरीनाम आप सुन रहे हैं। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, एक और बहुत ही मशहूर गायक हमारे सुरीनाम देश का मास्टरो प्रशांत राम जतन के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीत बाय द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम, तेरी ओर।

हाय रब्बा ब्यूटीफुल सॉन्ग म्यूजिक बाय द जूनियर्स और गायक था सुरिनाम देश का मशहूर गायक प्रशांत राम जतन जी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं ये तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आज से तो मित्रोलोकिस समर भी शुरू हो गया है ना, तो जरूर प्रोग्राम को सुन

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यू ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

में जलते रहे। क्या हुआ ये मुझको क्या हुआ है, और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार है।

पुरानी वाला माइकी मुकेश आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

और अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

रफी परमात श्री मोहम्मद रफी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफ तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो, मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी राज कपूर।

दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ। हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हा सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी के नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथिली बुकेर ए नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है।

0: सुनने वालों के सेवा में सादर सप्रियम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये पावन हिंदुस्तानी रेडियो है www.pavanfm.nl पर, वीफी रेडियो और तप रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:02 ऊपर आ और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहाग शहर से। जो बीमार है, लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया जॉनी नंबर वन का। भैया जॉनी नंबर वन, आप हृदय से धन्यवाद शुक्रिया कहा जा रहा है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे तरफ से, और मेरे सामने बैठे भैया यूसुफ उनके तरफ से भी। भैया जॉनी, आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, बस आहिस्ता घर जाइए अपने फटफटी पर कि मौसम अच्छा फटफटी के लिए। सोनदख फेफ जुले है, यानी 5 जुलाई है, आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, शाम होगा, रात होगा, पता नहीं कौन सा समय है। बहरहाल आप जहाँ भी होंगे, आप सबको एक शुभ रात्रि शुभ दिन पेश किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, और आपका हृदय से स्वागत है। मैंने कहा जोंदख 5 जुलाई है, तो गीत गजल कार्यक्रम लिखकर हम उपस्थित हैं। मेरे सामने बैठा भैया यूसुफ, अपनी आवाज़ सुना दीजिए। भैया यूसुफ, कैसे समाचार हैं?
1: सब ठीक ठीक ठाक है भाई।
0: पिछले सोनदख के तो ना रहे ले?
1: नहीं।
0: ओ बाकी हम ना रहे ली। या मुझको खबर है
1: या
0: तो पिछले सप्ताह रविवार को हम लोग नहीं थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो क्षमा की कमी हम आज पूरी कर देंगे। उस दिन शायद आप सोच रहे होंगे गंगा भी नहीं है, यूसुफ भी नहीं है, तार किसे करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं। बहरहाल तार का नंबर आपको मालूम है, 0 3 5 6 7 2 2 6 4 तक, या तो 0 3 2 6 2 6 4 तक। वो कमी पिछले सप्ताह का हम लोग पूरी कर देंगे अवश्य। दुबे लाइन द्वार से है भाई यूसुफ। ओके भाई यूसुफ, दंग के बहो तो लीजिए। पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं, जिस समय आप कोशिश कर रहे हो तार करने को, तो और तार के नंबर ढूंढ रहे होंगे, तो सुनिए ये शानदार गीत। निक नफीर तक से निकाल रहे हैं, देखते हैं फिल्म बरसात में से निकाले हैं ये शानदार गीत। सुन लीजिए इस तरह से लता जी।

जिया बेकरार है, छाई बहार है, लता जी आपको सुनाए हैं निकती निघ्न फिर तक का ये गीत, फिल्म प्रसाद में से निकाले हैं, ये 1949 का शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अच्छा अभी नहीं, अच्छा जिस समय आप कोशिश कर रहे हैं तार करने को, तार है नौ से इवन तक दी फाइव इन सस्त तक तुम तुम तक सेफ ना फेयर तक, या तो नौ से इवन तक दी तुम सस्त तक तुम तक सेफ ना सेफ तक। तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, माइकी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से आ रहा है मुकेश जी।

0: लता जी और माइती मुकेश, ये दोनों मिलके आप हुए द्विवेद सुनाएं। ये गीत हमने निकाले फिल्म बरखा में से चित्रगुप्त के साज पर और आपके लिए पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। तो चलो देखते हैं लाइन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत।
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार सस्क्रियाकार।
0: वालेकुम सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: चले धीरे, कैसे सब मोई?
0: बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाला के दया से, आप लोग की कृपा से चले हैं।
1: जी वो तो रहेगा, चाहे भी चलावे के भी तो
0: मोई मोई मोई। भैया मोहम्मद बताओ कौन गाना मांगत रहते हैं?
1: गाना रहेगा फिल्म वक्त, मोहम्मद रफी गाए थे वक्त से दिन और रात।
0: टाइटल सॉन्ग
1: रहेगा
0: वक्त से दिन और रात। हाँ, बहुत जबरदस्त गाना है,
1: विशाल गाना है।
0: हाँ,
1: और सब सुनने वालों के लिए, नाती लोग तो लोग के,
0: या
1: कभी वक्त आवे तब सब दूसरा रकम चले।
0: या दरअसल नाम मोई मोई। अच्छा बताओ कुछ धल्ले हैं?
1: एको धल्ली वेल भाई,
0: बोल ब्रूर, हम लोग सुनीला।
1: अच्छा,
0: बहुत बेचैनी से बोल।
1: अच्छा, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात
0: नहीं,
1: जो दिल करने मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बस है तो कानून ऐसा बना देता, दिल टूटने वालों को सास और मोहब्बत मौत
0: सास और
1: वालों को अनम सजा मौत सजा
0: सजा सजा मौत
1: मौत सुना दिल अनम देले।
0: हाँ हाँ मोई नहीं प्रिमा
1: हिंदी
0: उर्दू मिक्स है चिंता न कर रही कर
1: कोशिश करी
0: भैया मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपके भी, एक शुभ रात्रि और सब सुनने वालों के लिए
0: जरूर। ओके,
1: और घर पे जाइए, मार सलाम बोल जैसे
0: बोल देवे जरूर। ओके,
1: एंड फिर सक्सेस में द प्रोग्राम।
0: थैंक यू वेरी मच ब्रूर। ओके,
1: शुक्रिया
0: दा। ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत।
2: खुदा नाफंत भाई मसीला,
0: खुदा नाफंत सीला, कैसे रहले?
2: या खत खुदर भाई,
0: तब मोई सब कुछ प्रीमा?
2: या
0: बरखा और खाना बरसे है?
2: ना बिना बरसियो,
0: कल फोरख वीक को थोड़ा रहले, कहां भाग गए रहले?
2: वार वासिक नीत
0: तू ना बेल कर ले
2: और ये वासर तो हुक नीत
0: ओ हमू ना रहले ना ओ ना तो ठीक है। हाँ, अब तू ना बेल कर ले, हमू ना रहले, नहीं दन नहीं दन से खुद कोई शिकायत नहीं है।
2: अच्छा अच्छा,
0: और सब कुछ प्रीमा सीला?
2: या और भाई
0: नहीं मोई सीला, बताओ कौन गाना मांगत रहले सुने आज की रात?
2: फन हौरा ब्रेक, ये क्या कर डाला तूने?
0: अरे वाह, ये क्या कर डाला तूने?
2: हाँ,
0: रिखल
2: एस खुद
0: ना, इस खुद ना है तुको कहा हो तू बोल ले तो बोलते। हाँ, देखे तो के दो हफ्ता तेहित रहा, हमू ना रही ले, तू ना रही ले।
2: अच्छा,
0: ना लिखले है
2: एगो है गा?
0: हाँ गो है, फिर मारा चले दे।
2: या het mooie van het leven is recht voor je, maar het mooiste van het leven zit in je. Want hoewel iedereen ziet wat je doet, weten er maar weinig wat je waard bent. Leef, hou van lach, vergeef het, geniet van het leven.
0: Nou, Je hebt rechtstreeks in de roos geschoten.
2: Aan een kleine wala
0: hai. Aan kleine wala wie zoen lei.
2: Har din aata hai, har din jata hai. Mera dua rab se aap se wo sab kuch mile jo aapko dil chahta hai.
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद शीला, हमको भी मिल जाए, यूसुफ के भी मिल जाए, नहीं थैंक यू वेल, हेल गुड या एस गुड ना शीला, हेल फील लॉयस प्लेजर एंड थैंक यू वेल फाइन ऑफ टॉट द फॉलो द केयर एस गुड ना। ये थी इबन ब्यूरो के रहने वाली शीला जी। तो सब इस वक्त लाइन ठंडा है, आप तार कर सकते हैं 07-365-22-77 या तो 07-362-77। तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं लता जी की फिल्म असली नकली में से निकाल रहे हैं और देखते हैं। जी हाँ, 1962 का ये गीत, ये भी शंकर जय किशन के साज पर, चलो सुनते हैं।

तेरा मेरा प्यार अमर लता जी की आवाज़ में सुनाया गया। ये शानदार गीत हमने पेश किया फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म असली नकली में से निकालकर शंकर जय किशन के साथ पर 1962 का ये फिल्म निकली ट्विन सेस्ट का ये फिल्म हमने पेश की। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन की हुई हैं मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए पहला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है दनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो लीजिए भैया मोहम्मद आपके लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गीत है। ओपी नैयर जाने दे ओकर गुस्सा तनी नकिए पर रहत रहा तो रफ़ी से झगड़ा कर ले रहा। रफ़ी से बोले हम दूसरा रफ़ी पैदा कर देंगे, लेकिन जिस समय फिल्म वक्त बना उनका दाल नहीं गला, आखिर में रफ़ी साहब को बुलाना पड़ा उसे इस ये गीत के लिए। कहानी और है, अगर चाहोगे तब बताना तो हम आपको पूरा कहानी सुना देंगे बी आर चोपड़ा का। बहरहाल भैया मोहम्मद के लिए ये गीत चलाया जा रहा है शुभकामना के साथ। और भैया मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो लीजिए भैया मोहम्मद आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पेश कर रहे हैं इस तरह से।

फिल्म वक्त में से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर ये शानदार गिरनी के तीन फाइव सस्त का है 1965 का। और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि दना के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद ने ये गीत को मांगे हैं। भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। ये गीत आपने मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं की तरफ से और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं मैथ्यू मुकेश, मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। और हमने कहा था कि ओपी नैयर, क्योंकि ओपी नैयर का एक गीत हमने रखे थे प्लेयर में, इसलिए निकल गया मुख से ओपी नैयर, लेकिन हम कहना चाहते थे वक्त का प्रोड्यूसर, वक्त का प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा। हाँ, उनका भी नाक बहु नाक पर गुस्सा बैठा है, हमेशा रहता है, रहता नहीं रहता था कि क्योंकि अब तो वो नहीं है। बहरहाल बी आर चोपड़ा इस बदलदार में। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिर तेरा मेरा किया और मैथी मुकेश और शमशाद बेगम मिल के आपको सुनाए हैं, फिल्म शबनम में से निकाले हैं और ये गीत हमने चलाए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि 2 मिनट व्यतीत हो चला है 8:30 2 मिनट ऊपर ऑल ऑफ नहीं गए यानी 2 मिनट व्यतीत हो चला है 8:30 और आप तत्पर है जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ईपन ब्यूरख, ईपन ब्यूरख के रहने वाले शीला जी, माशुका शीला जी की तरफ से उनके माशुक जो मेरे सामने सन्मुख बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए यानी माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभरात्रि पेश करते हुए जी लीजिए शीला की तरफ से यूसुफ के लिए हम चला रहे हैं ये गीत। इस तरह से नहीं कहती अख्तम फाइव तक का 1958 का ये गीत है हावड़ा ब्रिज ओपन नैयर के साज पर। शाजी है

क्या कर डाला तूने, आशा जी आपको सुनाए हैं और हौड़ा ब्रिज में से निकाल कर निकली अख्तम फैफ तक का ये गीत और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में चलवाया गया सीला जी ने, इबन बेरके रहने वाले सीला जी ने। और ये गीत उन्होंने मांगे हैं मेरे सामने बैठा हुआ उनका माशिक माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ। तो माशुका की तरफ से माशुक के लिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सीला जी, आपको भी एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम चला रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से देखते हैं

0: veel succes hè, vanavond.
1: Dank u wel. Okay, dag mevrouw Angela.
0: Dag dag.
1: ये थी अंशला जी अलमेरे के रहने वाली. अंशला जी आपको एक बार फिर हृदय से स्वागत है पावन हिंदुस्तानी रेडियो के द्वारा. ओ अच्छा, तो अब हम एक ड्राई कर दें या तो सुनने वाला श्रोताओं, चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं. अब इस गीत के बाद अंशला जी के गीत हम चला देंगे ज़रूर. इस तरह से आ रहा है ये गीत के बाद अंशला जी नादित लीत.

हम तुमसे जुदा होंगे, हो के मर जाएंगे रो रो के। फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में से निकाले हैं उषा खन्ना के साथ पर। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसके गाने बहुत ज़बरदस्त गाने ये फिल्म में हैं। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है अलमेर के रहने वाली अंशला जी आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पा गए हैं, बस सिर्फ चलाना बाकी है। अलमेर के रहने वाली अंशला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए अंशला जी नोहमास फन हार्ट वेलकम एंड नित फ्रेसन खून दौर द्राफन। अंशला जी के लिए शुभकामना के साथ ये गीत इस तरह से आ रहा है गीत गजल के कार्यक्रम में।

0: प्यार कभी कम नहीं करना एंड दिस लिस्ट इज ऑफ खुदराइत नामस फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो एंड इट वाज फॉर मुफराव आंशला एट अलमेरा अलमेरे के रहने वाली आंशला जी के लिए। आंशला जी, उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा एंड नॉकमास फॉर हार्ट वेलकम एंड नीत वेक ब्लाइफन फॉलन द वेक सेकर बैलन। मार आंशला, एक हैव टॉक व्हाट टू फर्टेल अख्तराफ दाखते, यू हैव एन हेल मोई स्टैम, यू हैव द मोई रेडियो स्टैम। ये तो दिन आके ब्यूट में रहते थे, हम बोलती नो कौन मारंग के अम्पार के रॉप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो मैं आलमेरस फील्स तो फेर माँ अख्तर आफ दख्त नहीं आंशला हिफ्त मोह स्टैम दत क्यों तू वेल वही थे एन प्रात ही लरक फ्लिंक आंशला दंक वेल अम फैन आफंत। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम सब वापस आ रहे हैं। बस हम सब यूँ गए और यूँ आए
1: हैं। लात उस नॉइज़ में गान Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: www.vahonfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आओ भैया यूसफ, आपका भी हृदय से स्वागत है। और जो लोग तार किए हैं अब तक, आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। घड़ी पे देखो तो करीबन 1:30 से चला है 9:00। जो लोग चून किए हैं और इस समय आप कोशिश कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि तार का नंबर फाउन का कहाँ, तो हम बता देते हैं 07537322747 या तो 07537322747। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। भैया यूसफ कोई है लाइन पर अभी नहीं? अच्छा, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है माइती मुकेश The heart of millions का ये गीत इस तरह से

0: ये वादा करो चांद के सामने लता जी के साथ, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हमने, पेश की हो फरफाह हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म राज हात के ये गीत हमने पेश की। लाइन पर कोई है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद ना आफंत, खुद ना आफंत भैया, कैसे रहले भैया?
1: हम या खात खात खात कल ही अपना रहला भाईल या हम लोग के अतना कस कस यहाँ पर फिर वैरम दगा।
0: सॉरी सॉरी कुंची बोले वक्ती
1: हम बोले कल ही यहाँ कतना हलचल रहा रात के।
0: ओ हाँ
1: यहाँ वह सो अंश तक वार सो अंश तक हम लोग के यहाँ पर विशाल फिर वैरम दगे और हम लोग के यहाँ बरका रस्तवा नहर काद पर खाली तीत तीत तीत तीत तीत तीत रात भर सब ओ तो तीतर करके बड़का रस्तवा पर सब है नन वेर या एक खूब रात स्नल फॉर बैस
0: देंगे कोक
1: या एक खूब पर वन इस अपना सुधरे वाला है सब इतने है
0: ना उस सब फिल्मों देखी से को फिल्म रहा हम हाँ। नहीं सुधरेंगे जैसे वही कितना सुधरी
1: है या
0: सबके वही हाल है
1: या यो सबके वही हाल सबके वही हाल है
0: और ना बोल सके कि खुद वाला बांध कर दे कहीं कहीं होगी
1: नहीं दोनों नहीं नहीं कुछ ना कर सके हम लोग कुछ ना कर सके
0: जे जे बोली होके सब पकड़ा फरकलार कर दे बोली ये होती तो अब देश आर देता है इसमें माया मेंटालिटी ऐसी व्यस्ती है व्हाट यू फन हाउस है फन हाउस इट हैव मी खात
1: हाँ हाँ
0: एक आध गोहे
1: जोन बढ़िया बढ़िया है ना
0: ना ढेर ढेर
1: बढ़िया है हमारे पड़ोसी लोग बा हमसे जोन अच्छा से बोले बतिया है एंड सो एक को प्रॉब्लम ना
0: या कह के कन प्रतिमा को अपन ये लांदर और फील मनी रह मनी
1: थिया हाँ नतीलक नतीलक मारी सब इसब अंदाज ये गोरकोन के बहुत जरे है इसब गोरकोन के बहुत जरे है वही जैसे कि वही से इसब अपना फवाल करे हैं
0: एकरम चिढ़ावे है जैसे सोसिए के तो और मैया हां मखूद भैया तू कैसे रहले
1: या अथात अथात अथात धीरे धीरे चलावो
0: मोय
1: या सम सम बीच तो वारम दाग दन वेच नीत वार यू मुत सुक
0: या
1: सम सोत तो एक्ट है
0: ना एक स्टंग एज धर के वेंटिलेटर का सामान धर दिए तो
1: या हमारे वेंटिलेटर कैल्डर में धरल है ओ स्ट्रोंग लगी प्लस ये मुतनीत एरान वे ना तो खाली मंगे ओए के लगवा बैठे
0: तातिस गल बा
1: हां जस दा रोम नीत वे ना कैल्डर में धरल बा बेटर हम जाई पम बालकन में बैठ जाई तनी
0: दैट इज द बेस्ट
1: हां प्रेसल या बन अंदर स्वेच नीत वत में चो बे दी दिन से ओक नी खुद फसलाफिंग
0: बेया बताओ कौन गाना मांगत ले सुने
1: ए वेलकम लीचो हते क्वे नाउ एगो जोन हमारा गवे धरल रहा हम ना जाने कौन गाना है
0: ओ बोले तुमने पुकारा
1: खुद अजस्त्री
0: कैसे है
1: इसे किसने पुकारा
0: तुमने पुकारा और हम चले आए वही
1: ओ अच्छा तुमने हम लिख ली किसने ओ अच्छा तुमने पुकारा
0: या दिस फन फिल्म राजकुमार
1: ओके ओके दी हैव अ कॉप फॉर थ्री सो
0: नहीं प्रिमा अच्छा भैया बताओ व्हाट हैप्पी इन पे तो
1: व्हाट हैप्पी नाउ एक अपनी से एड सम मॉप टू से लाख मॉप
0: एक वो है मॉप एक बनूं बने उठ
1: हर पुरुष की यही कहानी हर पुरुष के यही कहानी घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी
0: नहीं मोई दैट इज इट
1: इट्स सम मॉप तो
0: या नहीं नहीं इट इज gewoon gezegd
1: ja of een gezegd of het lijkt wel een mop ik weet het ook niet maar ik vind het zo grappig
0: nee het is inderdaad grappig heel mooi verwoord
1: en dat was deze dit is ook een soort mop denk ik en poeste he ki shaadi mein phere lete samay chakkar nahi aayi to bole hain us samay nahi aayi
0: haan us samay later aayi
1: शादी के बाद जिंदगी भर आती
0: या या
1: बाप का घर बाप का घर बेटा का होता है लेकिन बेटा का घर बाप का नहीं होता Ah. Wat is die vraag?
0: Ja, ja.
1: Ah. Ja, is er een antwoord?
0: Ah.
1: Ja, baap ka ghar beta ke ho jata hai, lekin beta ka ghar baap ko nahi hota.
0: No, no.
1: Yeah. That is an yeah,
0: that
1: one dad wants to frame the in-house.
0: That is a reality.
1: Yeah. बोले है सब कुछ ऊपर वाला देखता है सब कुछ ऊपर वाला देखता है तो ना तो मंदिर और मस्जिद में ताले और कमरा क्यों होता है हाँ जो ऊपर वाला सब कुछ देखता है तो
0: या,
1: मंदिर में तो भगवान सब कुछ देखता है दोस्तान हो के कि कोई कुछ ना करे मार ताले कमरा सब कुछ लगते हैं
0: हाँ वो तो लगे हैं जरूर
1: तो सुर के दिन से खुश हो के
0: नहीं दरअसल नहीं रात से हो ग्लोब
1: या दैट इज ऑक्सो
0: नहीं खुद भैया थैंक यू वेल Ik wens jou een fijne avond, heel veel luisterplezier en,
1: ja,
0: straks,
1: zeker, zeker.
0: En straks misschien heel veel kijkplezier.
1: Ja hoor, ja,
0: een beetje
1: dankjewel. Ja, het wordt spannend vandaag.
0: Ah, informatie hebben we voetbal geleverd, Jozef Rai, die door Rajan Dwarka ze poetsen.
1: Ja,
0: zij zijn de voetbalmannen.
1: Ja, ja, ja, zeker, ah, zeker.
0: Bea, ik wens je een fijne avond.
1: Ja, jullie ook. En bedankt.
0: En tot de volgende keer.
1: Iedereen heeft
0: geluisterd. Is goed, jij ook daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Je thi Bea Gajraj ji. Den Haag ke rehne wali. Oh, chalo dekhte hain Yusuf. Koi aur hai? Oh, acha. तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से और वो है मेरे सामने माशूक बैठा हुआ है यूसुफ इबन बेरक के रहने वाला माशूक यूसुफ की तरफ से उनकी माशूका जो भी इबन बेरक में बैठी हुई है सीला के लिए तो माशूक की तरफ से माशूका के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं इस तरह से आ रहा है यूसुफ की तरफ से सीला के लिए

0: एक ही तू धनवान बाकी सब कंगाल, पंकज उदास आपको सुनाए हैं। आइए शानदार गज़ल पेश हुआ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और पेश करवाने वाला था इपन ब्यूरख के रहने वाला जनाब यूसुफ, माशुक यूसुफ की तरफ से, माशुका सीला जी के लिए, यूसुफ की तरफ से सीला जी के लिए शुभकामना के साथ शुभरात्रि पेश करते हुए आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत, हेलो
1: हेलो
0: या हेलो
1: या
0: खुदा नाफंत बस चले धीरे धीरे
1: एगो
0: गाना है कि कहाँ भाग गए रेल
1: है
0: जितना कमी पूरा कर देवे आल मंकमेंट खाऊं फंदाक आंसर।
1: Ik heb tegen Jozef gezegd, vandaag ben ik snel thuis gekomen, want ik was karaoke gaan zingen. Maar ik, arre? Ik zeg dat ben ik thuis gekomen, ik wil jullie even inbellen.
0: Ah, nee, dat is goed. Toen karaoke gereden?
1: Ja, vandaag.
0: Kaper?
1: Hier in Rotterdam.
0: In Rotterdam zelf? Oh, oké, mooi. Nee, mooi.
1: Ik probeer mijn best te doen. Toen wil ik dat je kan winnen.
0: Nee, mooi toch? Gewoon door blijven gaan, na rukie.
1: Oh, zit je
0: daar? Ha, ganom bhi Kishore Kumar ke ruk jana nahi. Ruk chalte rahiye. Jeevan chalte ka naam Mahendra Kapoor gaye se.
1: Deese so ko moye lip no.
0: Yeah.
1: Abhi na jao chhod ke ke diye abhi bhara nahi.
0: Chalo hum dono.
1: अभी तो आई है बाहर बन के ना छोड़ रखे
0: हम मांगते रही ऑफ लेवल स्टॉप कर दे ले तू नहीं दैट इज मोय या
1: और मैं खुद दुमा नहीं थे
0: नहीं खून दूर खान मेट योर हॉबीज
1: इट्स गुड या आई कैन कॉल
0: एंड इट इज एन मोय हॉबी एंड कराओके सिंगर या
1: बट इट इज एक गुड हॉबी
0: कहां जाइए कोई के बैन लेवे बैन तो है ना कोई ना बजाए तो रेखा तीन नहीं माई कान खून बहुत खान बस मोई तो
1: ये दूध ना खेल मत तो यो खत्म इस तरह
0: खेल नहीं अंदर के इर्शिला
1: अच्छा
0: बाकी बताओ कौन गाना रहा यूसुफ
1: या
0: यूस वेलकम ली था तो इर्शिला जी
2: गाना के बोल है गाना के बोल है
0: कैंट यू नॉक यूसी
1: अरे अभी तो गई ली
0: ओ वही वाला जाने क्या बात है ओके नहीं प्रीमा नहीं प्रीमा नहीं प्रीमा मुफरा सी Nou, je hebt geen gezegdes of zo deze keer?
1: Volgende week heb ik een goeie voor jou.
0: Ah bon, geweldig. We zijn benieuwd. Ham haptab hars agorab.
1: Zit je na? Hé, dankjewel hè. Het was even leuk toch?
0: Zeker weten.
1: Ik heb Jozef gezegd dat jullie moeten die inbelnummer straks een paar keer even omroepen.
0: Haha, bolal karila. Maar hoe je net zei toen als zo'n leren hele hoeie. Oké, zeker weten.
1: En jullie ook een fijne avond. En doe de groeten ook aan Jozef.
0: सालिक दोन यो सब सुने हैं
1: ओके
0: पास भी करवा आना है मुफ्रा और जी यो बतांगत
1: En
0: de groeten, heel veel luisterplezier, fijne avond. En misschien ook heel veel kijkplezier, hem naar jullie.
1: Kijkplezier?
0: Ah, voetbal het hoor, Raadke.
1: Ja, ja.
0: Maar moet je een keer bij je zoen, dat was bij je zoen hoor, denk ik.
1: Oh, ja, kijk wel even hoor.
0: Ja, maar goed.
1: Ik zit wel, maar ik ben, ja, kijk wel, maar ik ben geen voetballiefhebber hoor, maar kijk wel.
0: Is goed dan.
1: Ja, oké.
0: Okay. Mevrouw Jorzi, dankjewel. Fijne avond daar.
1: Fijne uitzending en ga zo door. Jullie zijn super.
0: Dankjewel. Bedankt voor de compliment. Dankjewel.
1: Dankjewel. Daar.
0: Je die Ursula ji Rotterdam ke rehne wali. To chaliye agla geet hum chalane wale hain. Wo hai, dekhte hain. Den Haag. Den Haag ke rehne wali Bea ji ke liye. Bea Gujarat ji ke liye. Bea ji, shubh kamana ke saath. एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए हम आपके लिए ये गीत पेश कर रहे हैं फिल्म फिल्म फिल्म राजकुमार में से निकाल कर शंकर जयकिशन के साथ पर हम चला रहे हैं इस तरह से बेया गजराज जी के लिए

0: रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत पेश हुआ। गीत गज़ल के कार्यक्रम में हमने पेश की देन देखते हैं दनाख दनाख के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया गजराज जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और शुभकामना के साथ ये शानदार गीत पेश हुआ दनाख के रहने वाली बेया जी के लिए। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत। हेलो खुदनाफंत मफराव बेया हुसत मत में मफराव बेया बेया फन उतर रख दें कि बेया और कुछ नवा हाल
1: vandaag niet zo leuke dag. Tweede jaar maar bijke overleden ook al verjaar hier.
0: Oké, nou dan wens ik je zeker heel veel sterkte bij deze.
1: Ja, dank je.
0: Acha, kakker al jij. Zindingen is al hoog, karre.
1: Ja. De broeren halen bij de weg.
0: Ja, oké. Nee, prima. Nou, heel veel sterkte vandaag. Acha, Arto, Bidigal, dieren, dieren. भैया वही के तुम तो कितना मुँह लग कर अब कोनो कहावत से कौन गाना मांगते रहे सुने भैया
1: जिंदगी क्या है गम के दरिया है
0: बड़ा सोच समझ के धल ले जिंदगी क्या है गम का दरिया है प्रीमा भैया या ओके मुफरो भैया थैंक यू वेल या इखारत फंदा खमीज कोर्ट हो omdat je in een heel andere situatie bent en dan nog heeft hij gedurfd om te bellen. Geweldig.
1: Ja. Nou, yes. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel Bea.
1: Fijne avond hoor.
0: Ja, jij okay. ook. Fijne luister. Heel veel luisterplezier en tot de volgende keer Bea.
1: Ja.
0: Fijne avond. Dag.
1: Is goed. Dag.
0: Jeet hier Bea ji, Utrecht keer rehne wali. तो देखते हैं घड़ी पर हाँ धीरे धीरे वो भी अपना काम कर रहा है क्योंकि वो रुकता नहीं ना। रोतरदाम के रहने वाली उर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ चलिए उर्शीला जी के लिए ये गीत हम चला रहे हैं। इस तरह से आ रहा है एक शुभ रात्रि पेश करते हुए रोतरदाम के रहने वाले उर्शीला जी के लिए।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, लता जी आपको सुनाइए ये गीत। और ये गीत चलाओ फरफान हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि रोटरडम के रहने वाली उर्शीला, रोटरडम के रहने वाली उर्शीला ने ये गीत मांगी है। उर्शीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने तार करके धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं को उर्शीला जी आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है बी बेया जी उतरा के रहने वाली। जी हाँ, बेया जी उतरा के रहने वाली। तो बेया जी शुभकामना के साथ तंदुरुस्ती दृष्टि पेश करते हुए, चलिए बेया जी के लिए हम चला रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में ये गीत उन्होंने मांगे। बेया हेल फील स्टेरक्त दंक यू वेल अनफेन आफन देते शिवलित आशुलिफ। फिल्म प्यार किया तो डरना किया, जी हाँ फिल्म प्यार किया तो डरना किया, वैसे निकाल रहे निक दिन द्रिय शस्त्र का ये गीत।

लिए गीत थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रोक देते हैं। तो हम पेश कर रहे हैं सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ, और जनाब मंजूर के लिए आप दोनों के शुभ रात्रि पेश करते हुए शुभकामना के साथ, सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए और जनाब मंजूर के लिए। इस तरह से आ रहा है जमा है मोहब्बत, और अनमोल घड़ी में से निकाल रहे हैं, और है देखते हैं, हाँ इस तरह से आ रहा है। नूर जहान है

जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना, मीला जी के लिए, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए ये शानदार गीत हमने पेश की फिल्म अनमोल घड़ी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर, और पेश करवाने वाली थी सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी और जनाब मंसूर। आप दोनों को फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चलिए ये आखिरी गीत बचा है और वो है आशा जी। आशा जी सुस्त के रहने वाली है तो लीजिए आशा जी शुभकामना के साथ सभी श्रोताओं के लिए इस तरह से आशा जी की तरफ से जो सुस्त के रहने वाली है। ये कौन थे आशा

जिंदगी प्यार की गीत है, फिल्म सौतन में से निकाले हैं। और ये शानदार गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जोंदा फेफ जुली यानी 5 जुलाई के कार्यक्रम में, गीत गजल के कार्यक्रम में। और पेश करवाने वाली थी सुस्त के रहने वाली आशा जी। आशा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार गीत पेश करवाने के लिए। यहाँ तक था यह कार्यक्रम जब मैंने पेश की। भैया यूसुफ तो चला गया, उन्हें कुछ काम निकल आया था, इसीलिए वो 9:30 बजे चला गया। मैं भैया यूसुफ को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारा साथ हमेशा देता है और आज भी दिए हैं। और बाकी के कार्यक्रम में जो लोगों ने भाग लिए उन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे कि जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला, इपन ब्यूरो के रहने वाली शीला जी, और अलमेर के रहने वाली अंशला जी, और इबन ब्यूरो के रहने वाली यूसुफ जी, और दना के रहने वाली बेया जी, रोतरदाम के रहने वाली इर्सिला जी, और इतरा के रहने वाली बेया जी, सूत्रमेर के रहने वाली जनाब मंसूर और मीला जी, और आखिरी में सुस्त के रहने वाली आशा जी। इन सब महानुभावों को हमें बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामना पेश कर रहे हैं, शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं कि अपना समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर वे लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में भाग लिए और कार्यक्रम सुने। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाख। जी हाँ, आने वाला दोंदरदाख को 12 और 3 के दरमियान, रात्रि को नहीं दिन को, यानी 12 फिर 5 3 12 बजे दिन से 3 बजे शाम तक आने वाला दोंदरदाख को हम आपसे मिल रहे हैं।

तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरा बात आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज, और न्यूज के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सभी सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, शुभ रात्रि फैन आफंत।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत के ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन

तेरी प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइक मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तो दोस्तों यार तुम बदल ना जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी का नाम है राजा निघंटिन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपके जॉनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

तेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना, उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शराबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी के नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए हैं ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सायरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन 1999।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों, और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है, और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बांध में। हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का, ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, नीखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये सुपर सॉन्ग थे 7000 किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए है दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नायती जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

कोई पूरा शहर हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

Our to Mr. Asi, और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: भाई जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नई खती 965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निमर तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमाश श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कभी न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्स 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम है पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।